नहीं नहीं नहीं रक्षति दुःखकरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखकरणे जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद ज

हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना।